0: तू सब नहीं स्टेशन था
1: मैन
0: शो 312 आर माय यूनिट ईस्टर्न सर्वर एंड आई बी 1030 है
2: Says Marjorie Miguelos out of Pascagoula, negative 4, negative 29. That 28 comes back, expired to a 24 Kia, gray in color, registered to a Marjorie Vargas Cristo out of Gulfport, no insurance.
3: Okay.